एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरज।

पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करु प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काब हो, आप हाथ दह मोह बचाव हो। सुखी बस है मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दह करिय, सब बैरन कवाद संगरिय। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूँ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले हूँ मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

नमस्कार है ताहि हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षिन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा, नमस्कार तिसहि को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहें अपारा, जब आकर्ख करत हों कब हों, तुम मैं मिलता देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब धर है, आप अपनी बोझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम।

दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहे, सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै। हो जो या की एक बार, चौ पई को कहै। चौ पई संबत सत्रह है, सहस पणिजय। अर्ध सहस पुन तीन कह जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार,

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइय जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर के। खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के। खालसा जी बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ।

तन मन थीवै हरिया सुख हो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जनम।

का नाम जन की बढ़ियाई, हर का नाम जन को भोग जोग, जन राता हर नाम की सेवा, हर हर जन के मालक जीना, हर हर जन के ओट स्थानी, ओत पोत जन हर रस राते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर की भगत मुक्त बहु करे, पार जाते हो हर का नाम, सावते हु तुम्हार की कथा, नाम की महिमा संत रित बसे, संत का संग बड़ भागी पाई,

0: अभ्यास कर्म तर्म क्रिया
1: जगत त्याग बन मध्य फिरया
0: अनेक प्रकार किए बहु जतना
1: दान होम वै बहु रतना
0: सीखता होम में कर राते
1: नेम करे बहु पाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: दान गुरमुख नाम जपी एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे फिर जीवे
1: महा उदास तभी सर थीवे
0: अगत माहे होमत प्राण
1: बैन कैस वै पर भूम दान
0: न्यौली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मालक सब जमत साधन
0: निमख निमक सिर कटावे
1: तो भी होमे मैं न जावे
0: हर का नाम समझ कुछ नाही।

0: संत कौड़ी संग चै
1: छोट संघ मचे
0: जो छड़ना सुस्थिर खरमाने
1: जो मन सो दूर पराने
0: छोड़ जाए तिसका शर्म करे
1: संग सहाय किस पर हरे
0: चंदन ले पुतारे तो
1: प्रीत बसम संग होए
0: अंध कुमे पितित बिगरा
1: नानक काड़ लियो प्रभु दयाल
0: तूत पशु की मांस जात
1: लोग पुचारा करे दिन रात
0: बाहर पेख अंतर मल माया
1: शब्द नाय कश करे शिवाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापे लोग सुहाना
0: अंतर अग्न बाहर तन स्वा

0: पद गावे गुंग
1: जठर करे तो ईश्वर भंग
0: कह पिंगल परत पर पवन
1: नहीं हो दुआ उस गवन
0: करतार कुणवे दिन बेनती करे
1: नानक तुम्हारी कृपा धरे
0: संग सहाय सु आवे न चीज
1: जो बैराई दासो प्रीत
0: बलुग के करे पीतर वसे
1: आनंद केल माया रंग रसे
0: दिल कर माने मने पति
1: काल नावे मुड़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: चूड़ बिगार महा लोक द्रोह
0: याहू जूत पिहाने के जन्म
1: नानक।

0: एक वक्त कान में खोट गवावे तो बूढ़ा को कहा करे ताको की जसन मसारा सर्व सुखता हुमन उठा
1: अपना हुक्म मनाया
0: सर्व सुख नानक तिन पाया
1: अपनी देरा
0: साथ भी करते आनंद उल्लास
1: अपनी अमान कछ बाहर साले
0: अज्ञानी मन रोज करे
1: अपनी प्रतीत आप ठीक होवे
0: और उसका विश्वास ना होवे
1: की बस किस आगे राखे
0: राखी आगे माने माथे
1: ते चौकर करे निहाल
0: नानक साहब सदा दयाल है
1: पात माया के हेत
0: सर्व हो जान नेत
1: की छाया सिउ रंग लावे
0: ओ विसे ओ मन पछतावे
1: जो जिसे सो चलन हार
0: लपट रहे होते अंधदार
1: बताओ सिउ जो लावे ने
0: ताको हाथ ना वेखे
1: हर के नाम की प्रिय सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तान तान कुटुंब संभाया
0: मिथ्या हो में ममता माया
1: मिथ्या राज जो बन तन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ हस्ती असुर वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया भेद हस्ता
1: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
0: मिथ्या आपस ऊपर कत गुमान
1: फिर भगत साध की शरण
0: नानक जब जब जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त दर को हरे
1: मिथ्या नेत्र भेखर पर त्रया रूपा
0: मिथ्या रसना भोजन स्वाद
1: मिथ्या चरण पर विकार को तावो
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा
0: मिथ्या बास लेत विकारा
1: बिन बूझे मिथ्या सब पे
0: सफल दे नानक हर हर नाम ले
1: मिट्टी साकत की आज जा
0: साज बिना के हो सूचा
1: मिथ्या ना बिना तन अंध
0: मुखावत आके दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रहन वृथा बिहाई
0: मे बिना जो खेती जाए
1: बिन भजन बिन पृथे सब काम
0: जो गुरु पर के नाथ धाम
1: तन तन ते जन जय कट बसो हर नाम
0: नानक दाके बल बल जाओ
1: रहत अवर कछ अवर कमावत
0: माने प्रीत मुखो गुण लावत
1: जानन हार प्रभु पर बीन
0: हार फेंक न काहु बीन
1: आवत उपदेशे आप ना करे
0: आव जाव जन्मे मरे
1: इसके अंतर बसे निरंकार
0: इसकी सीख तरह संसार
1: तुम पाने तिन प्रभु जाता
0: नान पुंज जन प्राता
1: बेंती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे माने
1: आपे आप आप कर्त निभेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझात नेरा
1: आप सियानत सगल तेरा
0: सब को जाने आत्म की रहत
1: पावे तिस ले लड़ लाए
0: आतरंत

संपर्के सुयान सासंग सबोधन वेरा साध के संगे ऊपर जतन नानक साध की सोपा ब्रह्मा समानी

रम्यानि संहिता रम्यानि का निर्मल मत ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी को बल बल चाहिए

ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सदा जीवे नहीं मरता।

जगदीश कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश नानक जी वह देख बढ़ाई कर्ण कराव सब को नाथ जो दुष्पावे सोई बंदियों प्रभु सो कर प्रभु से

हफ्ते नहीं छुटाए, सदके दुख नरक में पाए, सदके दुख सोवाते ही न, सदके दुख थान पर सोए, नान सत्संग निंद पीतरे, सदके दुख काग जो लगे, सदके दुख ते जो कमाए, सदके दुख सब को चले, सदके दुख नीच जाए, नान सब पाए तब भी गत पाए, सदका निंद के टिक न पाए, सदका निंद परमेश्वर मारा, सदका निंद दुखिया दीन, सदका निंद को सब जोग, नान सब पाए तब स्वामी हो मोग, सदका तो की किसे का नहीं मित, सदका तो की को सब त्यागे, सदका तो की सदा विकारी, सदकी दुखना सुनते डरे, नान सब पावे ता लय मिलाए, सदका दुखी ते काज न पहुंचे, सदका दुखी जुड़ पाईए, जो सास बिना मृत की लोता, आपन भी जा पे ही खाए, नान सब पावे ता लय उबार, यो जल भी हुन मछली तरपाए, जो पाप की तने त्रापे, जो वाट के खेत मारे वेला, सदका दुख से मिटिया गहत, नान जो तुझ पावे सोई थिया, सदका दुख को दरगर में निस जाए, सदका दुखी न मरे न जिवाइए, सदका दुखी चले न रासा, जैसा पावे तैसा कोई होए, नानक जाने सच्चा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार, तिसे त्यागो सास गिरास, जैसा करे तैसा कोती

sadhu sangh de jot prakatave nanak ki har locha pur purv likh ka likha paiye avar dyan sachidan kula kahe mere ajan labriyo ras rogi patang nanak pase di kar jaye राम नाम सतन कर पाया राम नाम हृदय में तोल अवर त्याग बिगा जंजाल मुख उजला दरगे सोए नानक ताके सब बलिहारे अरब साध को अपना जियो साधु को जाइए कुर्बान सास अगर कीर्तन गाइए हर गुण गाय अमृत रस्या के सर्व सुख नानक जय पाया भूखे को देवता दार

सब नसे एकंकार पूर्यो पूर्ण सबटाए अपनी कीमत आपे पाए। जब जब जीवे नानक का नाम नाम के तारे कण ब्रह्मांड नाम के तारे सुन के ध्यान ध्यान नाम के तारे सगलाकार नाम के समुद्रे सुन श्रवण नाल चौथे पद में सोजन गत पाए। पुरुष केवल प्रधान सत्पुरुष समाय स्वाणी मूल साथ साथ उत्पात जिसे बुझाए किसे सफली विश्वास और नान गुरते पाए। सत्य जन जाके दे प्रवेश नाम जपत ताकी गत होए आपे जाने अपनी मित गत अव न बूझ करत विचार नान जो दुष पावे सो वर्तिया जिन पूजा दिसाया

0: आज साफ करे
1: सो सेवक गुरु की मत ले
0: इस विश्व गुरु का मन माने
1: सो सेवक परमेश्वर की
0: सो साधु

0: पापं तव कहतेउ तारी
1: आपन सुन समाद
0: तब वैर रोग संत मात
1: जब इसका वर्ण चहन जाप
0: तब अर्थ सोभग से व्यापत
1: आपन आप आ पार ब्रह्म
0: तब मोह काग सोभद परम
1: आपन खेल आप तीजा
0: नान करने हार न दूजा
1: जब बोल ब्रह्म केवल तनी
0: तब मुक्त रोग स्वागणी
1: जब एक कह हर अगम पार
0: तब नर सुख को कौन उतार
1: जब निर्गुण प्रसह सुभाए
0: तब श्री सकत को गंगताए
1: जब आपके आप अपनी ज्योत रहे
0: तब कवन निर्गुण को गंगताए
1: आपन चितब करने हार
0: नानक सागर को पार
1: तब नासी सुख अपना सब
0: जब जन्म मन को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण कर्ता प्राप्त हुए
0: तब जब की त्रास पास होए
1: जब अभिगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र कुदुष कुशत लेखा
1: नाथ नंदन अगोचर अकादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन पादे
1: आपन आप आप ही चर
0: जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा
1: निर्मल पुरुष पुरुष पद होता
0: है भी मैं को क्या सोता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: जय कौन मान कौन अभिमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय सर्व शक्ति लगन को कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी जो संस्मार
0: जय किसे मुक्त कवन दत्तावे
1: कर्ण करावर करने हार
0: नानक कटे का नहीं समार
1: अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: जय कवन माय पाप मित्र सपाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण
0: जय वेद देवता को चीन
1: अपन आप आप उतारे
0: तो सगन अपसन कहा विचारे
1: आपन पूछ आपन अपनी रा
0: ते कौन ठाकुर कौन कही है चेरा
1: विस्मर विस्मर है विस्मार
0: नानक अपनी गत जानो आप
1: अचल अछेद अभेद माया
0: कुआ किसे व्यापत माया
1: उसको आप यादे
0: ते कौन का नाई प्रवेश
1: एक है एक ए भगवंता
0: ते कौन चित्त सलावे चिंता
1: ते आपन आप आप प्यारा
0: ते कौन कथे कौन सुने हारा
1: व्यंत ऊंचे ऊंचा
0: नानक आप सो आपे पहुंचा
1: आप रचियो पर पंच
0: गुण मैं की नो विस्तार

this is mine. Good bazaar nana subhavo. Sasya suna katamayega. Abadola kabudola. Mola baya gune mola. Dario swami yodhbodha. रावण हार प्रभु जाने नारायण दर्शन देख सब मोही इस प्रभु ने सभी उत्पात पावे का एक अंकार आपे आप भरपूर नानक जना बुझाए सर मैं आपे खनारा आप आप ही सुना आपका कारी की नी माया जो कुछ कहना सो आपे कहे नानक का भावे तले सिपाए पूरे गांव की ने कुछ करा आपे जाने आपने जी की बहुत बहुत आप संगराज दूसरो दसो जी पाए गुरु प्रसाद नानक के जान आप मिलाए

0: सत संतोख ग्रहज लयो हर पासियो कल समुलवे जन दर्शन नैने बेओ गुरगम परमान ते पायो सत संतोख ग्रहज लयो ग्रहज लयो हर पासियो कल समुलवे जन दर्शन लैने भयो
1: मन विश्वास पायो गहर गौ हदरत दियो गल नास तन नठ्यो अम्यो अंतरगत पियो रिद विगास जाग्यो अलख कल तरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दार दहरन पिखंत कल मल त्रसन साद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहने रसन उदारो चित दार दहरन पिखंत कल मल त्रसन साद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहने रसन
2: नाम अवखद नाम आधार और नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सियो कल नाम सुन नर है बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसिय गुरु कै अठसठ मज्जन होए नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसिय गुरु कै अठसठ मज्जन होए।

0: मरण बहीन
1: चकब कबरे चचक मानी भूतीन
0: लोक चौदह के बिके जग जाप ही जय जाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार।

0: आप रूप मीक अनुस्त एक पुरकव दूत
1: गर्भगंजन सर्वपन्यन आदरूप
0: अंगहीन पंगनातम एक पुरख पार
1: सर्वलायक सर्व

0: भुजंग पर्यात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्रवर्ती चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चाचरी छंद ना सतरा ना मित्रा ना परमंग ना पितरा ना चित्रा ना मित्रा परे है पवित्रा
1: प्रसाद कथते के आछे ज देश के आपे जपे से
2: कि आगे ज करने कि आवे ज बने
1: कि आदि ज लोक कह के आदित्य सु
2: कह कि आदु तबरने के बुद्ध करने
1: कि राजन प्रभा है के तर्मं तुजा है
2: कि आसो बरने
1: कि
2: सर्वा बरने
1: कि जंतन पुत्री है के छत्रन छत्री है
2: कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुप है
1: कि आग अदेव है कि आप अपेव है
2: कि जतन बहिन है के दिन
1: है रुसी रजा के रहीम में रिहा के
2: पाग वेद है कि
1: गुना है कि सहान सा है
2: कि कारुण को निंदा की रोजी दहिंदा
1: है राजक रहीम है कि कर्मं करीम है
2: कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है
1: कि सर्वत्र मानिए कि सर्वत्र दानी है
2: कि सर्वत्र गौने कि सर्वत्र गौने
1: कि सर्वत्र राजे कि सर्वत्र
2: साजे कि सर्वत्र देश
1: कि सर्वत्र राजे कि सर्वत्र साजे
2: कि सर्वत्र दीने कि सर्वत्र नीने
1: कि सर्वत्र जाहो कि सर्वत्र पाहो
2: कि सर्वत्र देशे कि सर्वत्र वेश
1: सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
2: कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता
1: कि सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
2: सर्वत्र काजे कि सर्वत्र राजे
1: सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है
2: कि सर्वत्र त्राणे कि सर्वत्र प्राणे
1: कि सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
2: कि सर्वत्र माने सदेवं प्रदानी है
1: सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
2: कि सर्वत्र भाने कि सर्वत्र माने
1: सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
2: सर्वं कली में के पद्मं फई में
1: आकर लला में के साहिब कला में
2: कि हुसन वजू है तमाम लजू है
1: मिसो सलाम में सा लिखत मुदा में
2: गरी मुल शिका से गरी मुल परस है
1: बिल्कुल मकाने जमीनो जमाने
2: तमी जुन तमाम में रजू अनिदान है
1: हरी फूल अजी मेरे जायक यकीन है
2: अनेकल तरंग है भेद है पंग है
1: अजी जुन निवाज है गनी मुल खिराज है
2: निरुक स्वरूप है तिमुकत विभूत है
1: भुक्त प्रभा है सुजुक तो सुधा है
2: सदैव स्वरूप अभेदी अनूप
1: समस्त पराज है सदा सर्व साज है
2: समस्त सलाम है सदैव लकाम है
1: निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
2: ओंगाद रूप है अनाद स्वरूप है
1: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
2: त्रिभंगं त्रिवादे अगंजे अगाध है
1: सुभंग सर्पागे सर्वा अनुरागे
2: त्रिभुवत स्वरूप है छिज है छूत है
1: प्रणास है पृथुअल प्रवास है
2: निरुकत प्रवाह है सदैव सदा
1: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
2: निरुक सदा है विभुक्त प्रवाह है
1: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
2: जाचरी छंद
1: अपंग है अनंग है।

0: गूंज तो गूंज के जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे।
1: भगवान के पुपते कौन किने नी जार पिचारे।
0: श्रीपत श्री भगवान पज

0: विचारिय
1: बाल समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया
0: इस नहुर दाओ नाही शब्द लाग सवारिया
1: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया
0: आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
0: हर कृपा के लुए कटे ज्ञान अंजन सारिया
1: अंदरो जिनका मोह तिटा तिनका सबद सचे सवार

0: एक परम पुले फिरे दैद सिख नाम लाख
1: सवारिया निर्मल जिन्ना पाणा पावे
0: कहे नानक जिस ते प्यारे सोई जन पावे
1: आओ संत प्यारे ओ कथकी करे कहानी।

0: चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले।
1: आप शाट सदा रहे परने गुरु भी ने अवर न जाने कोए।
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।
2: देखो गुरते वे मुखो है बिन सत मुकत न पावे।
0: पावे मुकत न होते कोई पुछो विवेक या जाए।
2: अनेक जुनी परमावे बिन सत मुकत न पाए।
0: फिर मुकत पाए लाख चरणी सतगुरु सबद सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सत मुकत न

0: न पाए सके पद्मापद वेद कते अपेर उजारे
1: रोजी राज बिलोकत राज करो रोहान की रोजी लटारे
0: कीट पतंग को रंग पुजंगम भूत भविक भवान बनाए
1: देवा देव खपे अपेम न पेम लख्यो प्रम से ऊपर पाए
0: वेद पुराण कते कुरान हसे थके कर हाथ न आए
1: प्रेम पर भाव बिना पत्स्यों के श्री पद महापद पाए
0: आद अनंत अगाध अद्वैक्सो पूत पवे

0: बट बीच बचावे।
1: जच पुजंग जच पुजंगन सो दानव देव पेवत में सब ही कर त्यावे।
0: आकाश पताल सातल जच पुजंग सवे से न्यावे।
1: पाए सके नहीं पार पर बाहु को नेथी नेथे भेद बतावे।
0: कोई जगे सभी गुजिया सुर हार परे हर हाथ नावे।
1: नारद से चतुरानर से रुन नारक से सब हु मिल गायो।
0: भेदक देव ना भेद लग्यो सवार परे हर हाथ नायो।
1: पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन।

0: जा के वस खान सुल्तान जा के वस सगल जान
1: जा का किया सब कुछ होए तिसते बाहर नाही कोई कहो बिनंती अपने सतगुरु पाए काज तुम्हारे दे निभाए रहाओ
2: सत्य ऊंचा का दरबार सकल पात चक का दर
1: सर्व व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा घट घट बनी।

ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। मात पिता हम बारकते, तुमरी कृपा में सुख कने। कोई न जाने तुमरा ऊचे ते ऊचा भगवन। सगल समगरी तुमरे सुतर तारी, तुम ते हो सो तुमरी गत मेत तुम ही जानी। नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दया वै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन ही वाह मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरु है अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया जी खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण न्योटियां दी ओड़। सचे पिता वाहिगुरू धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीओ महाराज। आप जी दे हजूर अमृत वेले दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना अंदर शब्द चौंकी। श्री आसा जी दे वार दे भोग जी की अरदास। छे पौड़ियां आनंद साहब जी की अरदास। भुल चुक माफ करनी अगे तो सुध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन दी दात बख्शनी। दाराई संगत नूं अपने दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां बख्शिश करनियां। कड़ा प्रसादी देख सदके हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। मेहरामत करो सतगुरु दी पावन हुक्म बख्शिश।

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परोपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गल बात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उन्हां नूं इह समा नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तो वध जिन्नियां भी जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ है, सिखी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिआ सी, घर घर मियां सभना जियां बोली अवर तुम्हारी। इह हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी दे ने, कोई मेरियां अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रवाबियां दी, पुछी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रवाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हाँ, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हाँ, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी हुई हाँ, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मात्र भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है। पर असी इस ते माण करिए, साड़ी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। सजना मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दियो। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।